अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जय। श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब, ये आकाशवाणी है। श्यामाना जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH, यूट्यूब की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओ, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप तक पहुंचता है। इस विशेष प्रसारण में मैं हूं आपकी साथी उद्घोषिका इरम। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। श्रोताओ, इस वर्ष श्यामाना जी यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और 28 अगस्त को अपने समापन पर पहुंचेगी, और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस विशेष प्रसारण में हम आप तक यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स, सभी जानकारियां पहुंचा सकें।

श्रोताओ, अमरनाथ यात्रा के कई रूप हैं, जिसमें से एक है छड़ी मुबारक, जिसकी यात्रा अभी जारी है। कल इस पवित्र शाटिका की स्थापना श्रीनगर के बड़शा चौक स्थित महादेवगिर दशम अखाड़ा ट्रस्ट की इमारत में मौजूद श्री अमरेश्वर मंदिर में वैदिक मंत्रों के जाप के साथ हुआ। महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में साधुओं के एक समूह ने यह अनुष्ठान किया, जो लगभग 2 घंटे तक चला। श्रोताओं, छड़ी मुबारक एक शुभ और आध्यात्मिक यात्रा की एक आखिरी और सबसे पवित्र कड़ी मानी जाती है। छड़ी मुबारक को महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में दशमी अखाड़ा से अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। ये परंपरा प्राचीन समय से जारी है। श्रोताओं, ये परंपरा रक्षाबंधन के आसपास होती है और ऐसा माना जाता है कि यही है अमरनाथ यात्रा का समापन। जब ये छड़ी मुबारक पवित्र गुफा तक पहुंचती है, तो वहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन, पूजा और आरती के साथ यात्रा का आखिरी पड़ाव पूरा होता है। श्रोताओं, छड़ी मुबारक की ये परंपरा सदियों से भी पुरानी है। आज भी ये यात्रा पहलगाम, चंदनवाड़ी, शिशनाग, पंचतरनी से होते हुए अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंचती है। इस दौरान एक काफिला इस पवित्र छड़ी के साथ साथ रहता है, जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित भी शामिल होते हैं। ये भाग्यशाली लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। आज भी जब अमरनाथ यात्रा में कई सुविधाएं बदल गई हैं, डिजिटलाइजेशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, छड़ी मुबारक की ये परंपरा उतनी ही जीवंत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड इस पवित्र सफ़र के दौरान पूरी सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब तक छड़ी मुबारक पवित्र गुफा तक नहीं पहुंचती, यात्रा अधूरी मानी जाती है।

श्रोताओ, जब भी श्रवण का महीना आता है, हिमालय की चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई होती है और लाखों भक्तों के दिल में बस एक ही नाम गूंजता है, बाबा बर्फानी। अमरनाथ पवित्र गुफा की वो पावन यात्रा जहां भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इस अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है पारंपरिक और सदियों पुराना पहलगाम का रास्ता और दूसरा है बालतल का रास्ता, जो थोड़ा छोटा है लेकिन कठिन खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। अभी हम इन्हीं दो मुख्य मार्गों के बारे में आपको बताएंगे। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम के मार्ग वाले रास्ते की। इस रास्ते को सबसे पुराना और सबसे पावन माना जाता है। यात्रा लगभग 48 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में भक्तों को 3 से 4 दिन का समय लगता है। पहलगाम के नुनवन शिविर से इस यात्रा की असली शुरुआत होती है। पहलगाम से अगला पड़ाव आता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी, जो पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, यहाँ लिदर नदी की कलकल बहती धारा यात्रियों का स्वागत करती है। चंदनवाड़ी तक यात्री गाड़ियों से जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे का सफर पैदल करना पड़ता है, या पालकी से होता है या पिट्ठों पर सवार होकर होता है। यहाँ से शुरू होती है सबसे पहली और कठिन चढ़ाई, पिस्सो टॉप। पिस्सो टॉप के बारे में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध हुआ था कि भोलेनाथ के दर्शन पहले कौन करेगा। देवताओं ने शिव जी की कृपा से राक्षसों को हराया और उनके ढेर से ये पहाड़ बनाया, जिसे आज पिस्सो टॉप कहते हैं। श्रोताओं, आगे चढ़ाई में कौन कौन से पड़ाव आते हैं और कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण, जो आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें DTH, न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।

पिस्सो टॉप की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद अगला सबसे सुंदर स्थान आता है शेषनाग झील। चंदनवारी से लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आप पहुंचते हैं शेषनाग। यहाँ एक गहरे नीले पानी की झील है जो बर्फ से घिरी हुई होती है। इस झील के आसपास 7 पहाड़ी चोटियाँ हैं जो बिल्कुल शेषनाग के फन जैसी दिखती हैं। भक्तों का मानना है कि शिवजी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले अपने सभी नागों को इसी जगह छोड़ दिया था। यहाँ के रात बिताने के बाद अगले दिन यात्रा आगे बढ़ती है महागुनस पास की तरफ। महागुनस टॉप सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ हवा थोड़ी कम हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यात्री यहाँ थोड़ा ध्यान से ही पैदल चलते हैं। महागुनस टॉप से नीचे उतरने के बाद यात्री पहुँचते हैं पंचतरणी। पंचतरणी में 5 नदियाँ आकर मिलती हैं जो माना जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली। ये पवित्र गुफा से पहले का आखिरी

खड़ा शिविर है। यहाँ से अमरनाथ गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाती है। पंचतरणी से आगे बढ़ते हुए अमरावती और पंचतरणी नदियों का संगम आता है, जहाँ भक्त स्नान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उस पावन द्वार की तरफ, जहाँ बाबा बर्फानी का स्वयं बनने वाला बर्फ का शिवलिंग विराजमान होता है।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम अमरनाथ गुफा तक जाने के दो पारंपरिक मार्गों के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक आपने पहलगाम के मार्ग के बारे में सुना, अब आपको बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, अगर पहलगाम का रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने का सफर है, तो बालतल का रास्ता उनके लिए है जो कम समय में यात्रा करना चाहते हैं। बालतल श्रीनगर से वाया सोनमर्ग से पहुंचा जाता है। बालतल शिविर से अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कठिन है। जी हाँ श्रोताओं, सिर्फ 14 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, लेकिन याद रखिए, बालतल का रास्ता छोटा ज़रूर है पर बहुत ज़्यादा खड़ा है और पतला है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों में खड़ी चढ़ाई करके हमारे तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। बालतल से यात्रा शुरू होती है दुमेल, फिर ब्रारी मार्ग और संगम होता हुआ सीधा पवित्र गुफा पर ख़त्म होती है। जो लोग शरीर से बहुत स्वस्थ हैं, वो बालतल से एक ही दिन में पैदल जाकर दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। दोनों ही रास्तों पर भारतीय सेना और जगह जगह लगे भंडारे यात्रियों की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। यात्रियों को मुफ्त में भोजन, गर्म चाय और स्वास्थ्य की सेवा दी जाती है। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक शारीरिक सफर नहीं है, ये आपकी श्रद्धा और आस्था की परीक्षा है। चाहे आप पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से जाएं या बालतल के मार्ग से जाएं, मन में बस एक ही नाम होना चाहिए, बम बम भोले।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच की सर्विस, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन एआर की मोबाइल ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये प्रसारण आप तक पहुंचता है और इस प्रसारण के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल आपको लिए चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे। 810
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ।

0: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
3: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं

0: करने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली कल संपन्न हो गई। ये रैली फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम

0: 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार।

असदुल्ला पहले ही इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती इम्तहान की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके

0: किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीरी पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026 के मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इंकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों, गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इंकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मुल्क आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दतकार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दतकार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वजीर आजम को गुलहाए अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी राजधानी में वाकई उनके मेमोरियल सदैव अटल पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी मौजूद थे। झारखंड में JPSC JSSC उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने मुबैना बेजाब्तियों के खिलाफ एहतजाज के ताज़ा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: एहतजाज के अगले मरहले के तौर पर तलबा लीडरों ने ऐलान किया है कि आज रियासत के तमाम 24 जिलों में वजीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन उनके अहम मुतालबात अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। रांची में पुतला नजर आतिश करने का प्रोग्राम अल्बर्ट ई का चौक पर मुनाकिद किया जाएगा। तलबा JPSC के 11वें से 13वें इम्तहानात और JSSC CGL इम्तहान मनसूख करने के साथ साथ मुबैना बेजाबतगियों की CBI तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने रियासती सरकार को 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1,307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहान के लिए आरजी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आरजी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाई की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा।

0: बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रोव, बोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी और नागफना शामिल है। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयाती तनावों को भी फरोग देते हैं। नई दिल्ली से नितिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी मर्तबा ई स्पोर्ट्स आलमी कप का खिताब जीत लिया है। टीम लिक्विड की नुमाइंदगी करने वाले मैक्स कारलसन इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हॉकी में भारत ने कल नीदरलैंड्स के एमस्टिलविन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 1-3 से हराया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 किया। वेल्स की जानिब से वाहिद गोल सैम वेल्श ने किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख़वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले 1 में 1 नौजवानों को मसनू जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कारलसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप तक पहुंचता है सुबह 7 से शाम 6 तक कई माध्यमों से आप तक पहुंचता है। आप हमें सुन सकते हैं YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, DTH की सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी और आम यात्रियों के लिए रास्तों की मरम्मत के कारण 9 अगस्त से यात्रा स्थगित होने के बावजूद ये पावन सफर अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पूरी यात्रा 28 अगस्त को श्रवण

पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन अपने समापन को पहुंचेगी। श्रोताओं, 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिनों की पावन यात्रा का सबसे अहम और धार्मिक हिस्सा पावन छड़ी मुबारक यात्रा है। महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में निकलने वाली ये छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान और आस्था के साथ आगे बढ़ रही है। छड़ी मुबारक के बिना अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से पूजन होने के बाद आगे बढ़ते हुए ये पावन छड़ी पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतनी से होते हुए 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पहुंचेगी। वहां विशेष पूजा, दर्शन और आरती के साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का आधिकारिक समापन होगा। श्रोताओ, इस विशेष प्रसारण से जुड़े रहिए, और भी बहुत कुछ आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। आप सुनिए नमकम चमकम।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, रास्तों की मरम्मत का काम चलने के साथ साथ छड़ी मुबारक की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन और स्वयं सेवक पूरे समर्पण से तैनात हैं। स्थानीय लोग और भक्त जगह जगह पर इस पावन छड़ी का स्वागत करते हैं। 3 जुलाई को आरंभ हुई इस पावन यात्रा में लाखों भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका, वहाँ दर्शन किए। श्रोताओं, 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा पर छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुँचेगी और उसके साथ साथ ये पावन सफ़र अपने समापन को पहुँचेगा। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ये विशेष प्रसारण आप प्रतिदिन सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी कोशिश रहती है कि श्यामाना जी यात्रा से जुड़े सभी अपडेट, सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, 9 अगस्त से जो है तीर्थ यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है और प्रशासन का ये फैसला कि किसी भी तीर्थ यात्री को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत का काम चल रहा है। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण पर आप यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां जानते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप नोट फरमाएँ, akashwanibaltal@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप मेल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं हमें। इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड आप कोई बात जानना चाहते हो या आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो, आप हम तक पहुंच सकते हैं akashwanibaltal@gmail.com के ज़रिए। ये ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फ़ोन नंबर भी है जिसके थ्रू आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट फरमाएं, फ़ोन नंबर है 9596990954, यानी कि 9596990954। आपको बताते चलें कि 9 अगस्त से यात्रा फ़िलहाल निलंबित है। प्रशासन का ये फैसला कि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत के कारण यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, पर छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो बिल्कुल अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल दशमी अखाड़ा में छड़ी मुबारक की स्थापना हुई है और श्री अमरेश्वर मंदिर में इसकी स्थापना हुई और 17 अगस्त को छड़ी पूजन होगी नागपंचमी पर, और दशमी अखाड़ा में ही छड़ी मुबारक की पूजन अर्चना होगी और भक्तों के लिए, दर्शन के लिए ये वहाँ रखी जाएगी जहाँ पर हमारे जो भक्त हैं इसके छड़ी मुबारक के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और 28 अगस्त को महंत देवेंद्र गिरी जी की आवगाई में छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा मंदिर पहुँचेगी, वहाँ पूजा अर्चना के बाद ही इस वर्ष की जो अमरनाथ यात्रा है उसका समापन होगा।
श्रोताओं, अगर आप के कुछ सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहें तो आप हम तक पहुंच सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के ज़रिए जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा पहलगाम से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और हमारी कोशिश रहती है कि यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। ये यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और 9 अगस्त से फिलहाल प्रशासन ने यात्रा को स्थगित रखा है क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत चल रही है, पर छड़ी मुबारक की यात्रा जो है अपने स्केड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, अगर आप यात्रा से जुड़े कोई भी बात जानना चाहें तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, हमारे इस प्रसारण से आप जुड़ सकते हैं, या उनकी एक हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो आप नोट फरमाएं, www.jksasb.nic.in। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, www.jksasb.nic.in। इस पर जाकर आप यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इनका एक टोल फ्री नंबर है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का, कंट्रोल रूम बनाया है आप लोगों की सहायता के लिए, 1800-1807198, 1800-1807198। एक और हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807199, 1800-1807199। इन दो टोल फ्री नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और वहां से जानकारी सूचना हासिल कर सकते हैं। हमारे प्रसारण से जरिए भी आप तक सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, सारी जानकारियां पहुंचती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे प्रसारण से जुड़ने का भी एक माध्यम है, फ़ोन नंबर 9596-590054, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ईमेल एड्रेस है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं, जो हमारा ईमेल एड्रेस है akashvani@gmail.com। इसके ज़रिए आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, अभी वक्त हो चला है समाचारों का, समाचार के उस पार आपके साथ फिर से जुड़ेंगे इस विशेष प्रसारण में। अभी आप चंद ही लम्हों में उर्दू में समाचार सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तवानाई की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अथक काम कर रहा है और मुल्क इस मंजिल पर खड़ा है जहां वो अपने सारे वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। यौम आज़ादी के मौके पर कल नई दिल्ली के लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी ज़रूरियात में से एक है और सरकार ने इस सिलसिले में कई अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी का एक वसीला है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा

0: माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने अगले 5 से 7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुज़श्ता 5 से 7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर भारत को मुबारकबाद देने वाले आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। उनमें फ्रांस, स्लोवाकिया, इसराइल और मालदीव के सुदूर शामिल हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म ने तहनियती पैगाम के जवाब में वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के दीरेना तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने यौम आज़ादी की मुबारकबाद के लिए भूटान के वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया। कौम आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उनकी यादाद सदैव अटल पर उन्हें गुलहाय अकीदत पेश की है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह समेत मुतअद्दिद मरकजी वजरा और अहम शख्सियात भी मौजूद थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन के कायम और तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एलजी ने यौम आजादी के मौके पर कल लोक भवन श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल शाम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में यौम आजादी के मौके पर एट होम इस्तकबालिया दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, वजरा अरकान और पार्लियामान असेंबली, आला सिविल व पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत मुतअद्दिद शख्सियात दावत में शरीक हुई। वजीर आला ने मेहमानों से मुलाकात की और उन्हें यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने पुंछ के काजी मोहरा और झल्लास इलाकों में आवाम से मुलाकात करके इलाके में आए हालिया सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद पैदाशुदा मसाइल का जायजा लिया। काजी मोहरा में लोगों ने सैलाब से सड़कों, आबी निजाम और दीगर बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान की फौरी भरपाई का वजीर से मुतालबा किया। झल्लास में आवाम ने पीने के पानी की किल्लत, आबपाशी निजाम की खराबी और मुतासर वाटर सप्लाई स्कीमों की बहाली से मुतलिक मसाइल को वजीर की दानिश में लाया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद ने असेंबली मेंबर जैनपुरा शौकत अहमद गनाई और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपया के हमरा शुपया के झालाबारी से मुतासर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जिला के कापरन, परसू, कांजी उलर, परीपुरा, मंधंजन और पंदूशन समेत दीगर इलाकों में मुतासर बागात का मुआयना किया। डायरेक्टर मौसूफ ने बाग मालिकान से बातचीत करके उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। जिला पुंछ के बगलिहार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तबा ठिकाने पर छापा मारकर असलाह, गोला बारूद और धमाका खैज मवाद बरामद किया है। आकाशवाणी जम्मू की नुमाइंदे के मुताबिक फौज की 16 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इलाके में मुश्तरक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान 6 बारूदी सुरंगे, 1 AK-47 राइफल और 7 कारतूस बरामद किए। फौज ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी करार दिया है। माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अय्याम मुतबरका का आगाज हो गया है। इस ताल्लुक से आसर शरीफ दरगाह हजरत बलोर वादी के दीगर खानकाहों, मसाजिद और बुकजात में खुसूसी दीनी मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। और अब दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.1 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण, आइए गायत्री मंत्र सुनते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें कहीं से भी सुन सकते हैं, कई माध्यम हैं जिनके जरिए आप हमें सुन सकते हैं। आप हमें सुन सकते हैं YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, DTH की सर्विस, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खराब मौसम और रास्तों की स्थिति को देखते हुए 9 अगस्त से ही आम श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को प्रशासन ने स्थगित किया, लेकिन बाबा बर्फानी की पूजन परंपरा अभी भी पूरे विधि विधान के साथ आगे बढ़ रही है। महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना हो रही है। अपने अलग अलग पावन पड़ावों से होती हुई वो पवित्र गुफा 28 अगस्त को पहुंचेगी। श्रोताओं, श्रीनगर के पावन दशमी अखाड़ा से शुरू होकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ती ये छड़ी मुबारक हमारी सदियों पुरानी धरोहर है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि भृगु ने सबसे पहले पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस पवित्र छड़ी मुबारक में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती की शाखाएं विराजमान हैं। श्रोताओं, आम यात्रियों के लिए रास्ते जरूर बंद हैं, पर इन दुर्गम पहाड़ों और घाटी में पहाड़ों के बीच छड़ी मुबारक के आगमन के साथ ही हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों की गूंज अभी भी है। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने पहलगाम और बालतल दोनों ही मुख्य मार्गों से पवित्र गुफा में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और वहां पे माथा टेक कर पूरी इंसानियत, देश और अपने लिए भी दुआएं मांगी। श्रोताओं, मौसम की कठिनाइयों और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रा स्थगित करने का फैसला आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। पूरे यात्रा काल में हमारे सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन और विशेषकर हमारे कश्मीरी भाइयों ने जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की सेवा और सहायता की है, वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की एक मिसाल है। इन सभी के प्रयास और सेवा भाव को हम मन से प्रणाम करते हैं। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई को आरंभ हुई 57 दिनों का ये पावन सफर अभी भी जारी है। 28 अगस्त यानी कि श्रवण पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन भी होता है, उस दिन छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में पहुंचेगी और वहां पूजा अर्चना होने के बाद ही इस पावन और पवित्र यात्रा का समापन होगा। श्रोताओं, यात्रा से जुड़े सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां हम इस विशेष प्रसारण से आप तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सभी जरूरी सूचनाएं पहुंचे। अगर आप इस विशेष प्रसारण के जरिए हम तक जुड़ना चाहते हैं, यानी कि इस विशेष प्रसारण से जो हम आप तक बात पहुंचाते हैं, अगर आप इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड कोई बात हम तक पहुंचाना चाहें या अमरनाथ यात्रा के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहें, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर ही जाकर आपको यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। आप वो भी विजिट कर सकते हैं या उनकी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है हमारे तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उसका फ़ोन नंबर है 1800-1807-199, 1800-1807-199। ये दो टोल फ्री नंबर्स हैं। एक और फ़ोन नंबर है इनका
6-4। तो आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वैसे तो हमारे इस विशेष प्रसारण के ज़रिए हम आप तक सारी सूचनाएं, सारी जानकारी पहुंचाते हैं, पर फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप श्री अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड की जो कंट्रोल रूम इन्होंने स्थापित किया, उसकी जो हेल्पलाइन नंबर हमने आपके साथ शेयर कर ली, उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हमने आपके साथ शेयर कर लिया 9596990954, इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हम आपके प्रश्नों का जवाब उत्तर ज़रूर देंगे। श्रोताओं, फिलहाल सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण। आइए चंद भजन सुनते हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, आइए विस्तार से बात करते हैं श्यामानाथ यात्रा 2026 में प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा की गई विशेष सुविधाओं, आधुनिक प्रबंधों और व्यवस्थाओं के बारे में। श्रोताओ, इस साल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आधुनिक तकनीक का व्यापक प्रयोग किया। प्रत्येक श्रद्धालु के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID कार्ड युक्ता पहचान पत्र अनिवार्य किया गया। इस कार्ड के माध्यम से जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक बने विभिन्न सेंट्रल कंट्रोल रूम से हर एक यात्री की एग्जैक्ट लोकेशन पर रियल टाइम नजर रखी गई। इसके अलावा

0: पूरे यात्रा मार्ग पहलगाम, बालतल, चंदनवाड़ी, शिशनाग, पंचतरणी और पवित्र गुफा तक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास और आधुनिक ड्रोन कैमरास के जरिए 24 घंटे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की गई। किसी भी आपातकालीन स्थिति, लैंडस्लाइड्स या मौसम की खराबी पर तुरंत क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को रवाना करने के लिए सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को निरंतर एक्टिव रखा गया।
1: जय शंकर महाराज एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखना
2: भाई जा कहाँ रहा है?
3: पता नहीं, तू जा, ख्याल रखना अपना।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण और श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा रखी गई विभिन्न सुविधाओं की, जिससे हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए रखा गया। श्रोताओं, अधिक ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासन ने जगह जगह चिकित्सा क्षेत्र के भी चिकित्सा केंद्र बनवाए। दोनों ही मार्गों पर, यानी कि पहलगाम और बालतल दोनों मुख्य मार्गों पर DRDO और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 100-100 बेड वाले स्टेट ऑफ द आर्ट टेम्पररी हॉस्पिटल बनाए गए, जहां ICU, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की तैनाती 24 घंटे रही। दुर्गम रास्तों पर हर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बूथ्स, मेडिकल एड सेंटर्स और फर्स्ट एड स्टेशन स्थापित गए, ताकि किसी भी यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा किसी भी गंभीर रूप से बीमार या घायल यात्री को तुरंत लोअर ऑल्टीट्यूड पर लाने या बड़े अस्पतालों में भेजने के लिए डेडिकेटेड मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स को हमेशा स्टैंड बाई मोड पर रखा गया। प्रशासन ने चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ही अद्भुत व्यवस्था की है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये सारी सुविधाएं हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर रखी गई हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें सहयोग मिल सके। डॉक्टर्स की टीम, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बूथ्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो तैनात हैं 24 घंटे दोनों ही मार्गों पर, ताकि हमारे तीर्थ यात्री अगर किसी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो उन्हें, तो उन्हें उसकी लिए जो है वो वहाँ पर मेडिकल इवैल्यूएशन उनका हो सके। श्रोताओं, और भी कुछ बात करेंगे इस विशेष प्रसारण में, आप बने रहिए हमारे साथ।

श्रोताओ, भक्तों के रहने और विश्राम के लिए प्रशासन द्वारा हर पड़ाव पर व्यापक सुविधाएं दी गईं। बालतल, पहलगाम और विभिन्न पड़ावों पर हजारों की संख्या में वेदर प्रूफ टेंट्स और प्री फैब्रिकेटेड हट्स का प्रबंध किया गया। भारी वर्षा, बर्फबारी और तेज ठंड से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं ये टेंट्स। श्राइन बोर्ड और देश भर से आई स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जगह जगह विशाल लंगर लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध, पौष्टिक और गर्मा गर्म भोजन और पानी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हजारों इको फ्रेंडली मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए और क्लीनिनेस वॉलंटियर्स की विशेष टीम्स की तैनाती की गई, ताकि हिमालयन इकोसिस्टम को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जितने भी हमारे यात्रियों के लिए रखी गई थी सुविधाएं, उनके बारे में बात करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय प्रशासन के, जो उन्होंने यात्रा मार्ग को पहले से कहीं ज्यादा सुगम और चौड़ा बनाया है। खतरनाक मोड़ों और ढलानों पर सेफ्टी रेलिंग्स और प्रोटेक्टिव वॉल्स लगाई गई हैं, जिससे पैदल चलने वाले, घोड़े पालकी वाले और पिट्ठो यात्रियों के लिए रास्ता पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। रात के समय यात्रियों को आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए पूरे यात्रा मार्ग पर सोलर लाइट्स और हाई मस्ट लाइट्स की व्यवस्था की गई है। सीनियर सिटीजन्स और कम समय वाले यात्रियों के लिए पालतल और पहलगाम से पंचतरणी तक की स्मूथ हेलीकॉप्टर बुकिंग्स भी पिछले साल हुआ करती थी, इस साल हालांकि वो सुविधा बंद रखी गई है। श्रोताओ, पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम रास्तों में बहुत ही मुश्किल होता है फोन लाइंस का मिलना, फोन लाइंस का जुड़ना या कॉल्स का जुड़ना। तो कई सारे हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके सहयोग से पूरे यात्रा रूट पर अनइंटरप्टेड मोबाइल नेटवर्क टावर्स और वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए, जिससे हमारे लाखों यात्री इन पहाड़ों के बीच से भी अपने परिवारजनों से बात कर सके, निरंतर संपर्क कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स और श्राइन बोर्ड द्वारा 24 घंटे एक्टिव रहने वाले इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स और LED डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को रियल टाइम वेदर अलर्ट्स मिलते रहे और वो वहां से जानते रहे कि मौसम के क्या कुछ हाल हैं। इन्हीं विशेष सुविधाओं और आधुनिक प्रबंधों और प्रशासन के अथक प्रयासों के कारण ही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 सुगम और सुरक्षित बनी रही है। फिलहाल 57 दिनों की यात्रा जो है अभी जारी है। हालांकि जो हमारे आम यात्री हैं, उनके लिए प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर काम चल रहा है मरम्मत का, पर छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो शेड्यूल के हिसाब से जारी है और 28 अगस्त जब इस यात्रा का समापन होगा, उस दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा के मंदिर पहुंचाया जाएगा। वहां पूजा अर्चना के बाद ही इस अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन होगा। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं ये विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जो आप तक पहुंचता है FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों से आप हमें सुन पा रहे हैं यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप, DTH की सर्विसेज और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो,

तो आप हमसे जुड़ सकते हैं akashvanibaltal@gmail.com पर, या हमारे फ़ोन नंबर 9596990954 पर, 9596999054। इंतज़ार रहेगा हमें आपकी मैसेजेस का। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश कि हम आप तक इस विशेष प्रसारण के ज़रिए यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं और

श्यामला जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालदल से एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 12 बजने वाले हैं, लिए चल रहे हैं हम आपको आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency NTA has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support each challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The last date for payment of the processing fee is 18th of this month. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Nabin were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by the BRICS Senior Officers Meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers Meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. The students are demanding cancellation of the JPSC 11th to 13th examinations and the JSSC-CGL examination, along with the CBI probe into alleged irregularities. Here's a report.
1: The JPSC-JSSC Reform Manch has given the state government an ultimatum to take positive action by August 18th. The protesters have also, for the first time, demanded the resignation of Chief Minister Hemant Soren. They have announced a major protest outside the Chief Minister's residence on August 20th and said they would continue their agitation there if their demands are not addressed. The Reform Manch has said the agitation will be intensified in the coming days and will draw inspiration from the ideas and spirit of Bhagat Singh. Mahvish Rahman, Akashwani News, Raj.
3: Keralam is getting into the festive spirit as the state's biggest annual festival, Thiruvonam, will be celebrated on August 26th. The Onam festivities begin today with Atham. Onam is not just a one-day festival. The formal celebrations begin on Atham Day, being observed across the state from this morning. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh, Kenjetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand, parts of Northeast India, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Maharashtra, Goa, Konkan and Madhya Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. And that is the end of this news bulletin.
4: Shyamanaji Yatra 2026 ka ye vishesh prasaran. आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें अपने घर बैठे सुन रहे हैं DTH की सर्विसेज, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप, वेव्स OTT की प्लेटफॉर्म तथा यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 इस वर्ष 3 जुलाई को आरंभ हुई और अभी तक लगभग 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 9 अगस्त से प्रशासन ने यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। अस्थायी रूप से यात्रा को स्थगित किया गया क्योंकि यात्रा मार्ग पर ट्रैक्स की मरम्मत होनी है। इस वजह से तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया, पर छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल चल रही है। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि आप ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक यात्रा से जुड़े सभी सूचनाएं, सभी जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें, सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। अभी आप तक चंद भजन पहुंचाते हैं।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: साथ
1: अभी आप सुन रहे थे
0: सिंगी नाद बजाया है देखो रीक बाला जो भी द्वार हमारे आया है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. The students are demanding cancellation of the JPSC 11th to 13th examinations and the JSSC-CGL examination, along with a CBI probe into alleged irregularities. Here's a report.
2: The JPSC-JSSC Reform Munch has given the state government an ultimatum to take positive action by August 18th. The protesters have also, for the first time, demanded the resignation of Chief Minister Hemant Soren. They have announced a major protest outside the Chief Minister's residence on August 20th and said they would continue their agitation there if their demands are not addressed. The Reform Munch has said the agitation will be intensified in the coming days and will draw inspiration from the ideas and spirit of Bhagat Singh. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Kerala is getting into the festive spirit as the state's biggest annual festival, Thiruvonam, will be celebrated on August 26th. The Onam festivities begin today with Atham. Onam is not just a one-day festival. The formal celebrations begin on Atham Day, being observed across the state from this morning. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Parts of Northeast India, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Jharkhand, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win over on Australian soil and only its second victory over Australia. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd.

at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. And that is the end of this news bulletin. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ DTH की आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा एक बहुत ही पवित्र यात्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र गुफा की यात्रा है। इस गुफा में हर साल ठंड के मौसम में बर्फ की एक शिवलिंग बनती है। ये शिवलिंग गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से बनती है। जैसे जैसे चांद बढ़ता और गढ़ता है, इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता और गढ़ता है। मान्यताओं के मुताबिक अमरनाथ गुफा वो जगह है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। माता पार्वती ने शिव जी से अमर होने का रहस्य जानना चाहा। शिव जी उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां कोई तीसरा जीव इस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने इस सुनसान गुफा को चुना। गुफा तक पहुंचने के रास्ते में शिवजी ने अपनी सभी चीजें त्याग दी। पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा, जी हाँ, जो कि उनका बैल था, और इसी वजह से पहलगाम का नाम बैलगांव भी पड़ा। चंदनवारी में उन्होंने अपनी जटाओं से चांद को उतारा। शीशनाग में उन्होंने अपने गले के सांपों को छोड़ा। पंचतरणी में उन्होंने अपने पांचों तत्वों को छोड़ा। गुफा में पहुंचकर शिवजी ने चारों तरफ आग लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके, और उन्होंने कथा सुनानी शुरू कर दी। जब शिवजी कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती बीच में सो गए, लेकिन गुफा में दो कबूतरों के अंडे थे जिसमें से बच्चे निकल आए थे। उन बच्चों ने कथा सुन ली और हाँ हाँ करने लगे। शिवजी ने समझा कि पार्वती जी सुन रही है। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने देखा कि पार्वती जी सो रही है, तो उन्होंने गुस्से में कबूतरों को देख लिया। कबूतरों ने कहा, प्रभु, अगर आपने हमें मार दिया तो ये कथा झूठी हो जाएगी। शिवजी ने उन्हें छोड़ दिया, और आज भी लोगों को इस गुफा में दो कबूतर दिखते हैं जिन्हें अमर कबूतर कहा जाता है। पौराणिक समय के बाद ये गुफा बीच में लोगों ने छोड़ दी थी या भूल गए थे। इतिहास के मुताबिक इस गुफा को फिर से ढूंढने का श्रेय एक मुस्लिम चरवाहे को जाता है। जी हाँ, लगभग 1500 साल पहले बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा इस इलाके में अपने भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दी। जब बूटा मलिक ने घर पहुंचकर देखा तो वो कोयला जो है वो शुद्ध सोने में बदल चुका था। वो तुरंत उस साधु का शुक्रिया अदा करने वापस भागा, पर साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह बूटा मलिक को एक विशाल पवित्र गुफा दिखी जिसमें बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। इसके बाद बूटा मलिक ने गांव वालों को बताया, और तभी से अमरनाथ यात्रा मॉडर्न समय में फिर से शुरू हुई। कहते हैं इस खोज के बाद सालों तक बूटा मलिक के परिवार को यात्रा के चढ़ावे का एक हिस्सा मिलता था।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। इसके अलावा हम प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, इस साल अब तक लगभग 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में माथा टेका। पहले 18 दिनों में ही यात्रा ने 4,14,000 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया और इससे एक नया रिकॉर्ड बन गया। इस बार अमरनाथ यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान लगभग 1

0: आग सुरक्षाकर्मी जो है वो जम्मू बेस कैंप से लेकर गुफा तक तैनात किए गए हैं, और सुरक्षा के लिए ड्रोन्स, PTZ यानी कि पैन टिल्ट जूम कैमराज, CCTV और बुलेट प्रूफ स्निपर्स का इस्तेमाल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक ट्रैक्स पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जीरो वेस्ट यात्रा पॉलिसी सख्ती से लागू की गई है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा अभी रुकी हुई है, लेकिन जम्मू में पुंछ के लिए बुड्ढा अमरनाथ यात्रा 2026 17 अगस्त यानी कि कल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बेस कैंप भगवती नगर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा 2026 17 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है और ये यात्रा 12 दिन की रहेगी। इसका समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन होगा। पहला बैच कल सुबह भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से पुंछ के लिए रवाना होगा। आपको बता दें, ये पवित्र मंदिर जम्मू से लगभग 230 किलोमीटर दूर पुंछ जिले के मंडी तहसील राजपुरा गांव में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास से पुलस्तिया नदी बहती है। दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने की परंपरा है। आपको बता दें, यहाँ बर्फ की शिवलिंग तो नहीं बनती है, लेकिन एक सफेद पत्थर का शिवलिंग है जो साल भर रहता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कश्मीर वाली गुफा की यात्रा शुरू की थी, तो इस इलाके को शुरुआती पॉइंट बनाया था। और इसके साथ पुराणिक समय में यहाँ की रानी चंद्रिका भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बुढ़ी होने के कारण कश्मीर की कठिन यात्रा नहीं कर पाती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक बुढ़े साधु के रूप में यहाँ दर्शन दिए और इस जगह पर एक एकम पत्थर का मंदिर प्रकट किया। साधु के गायब होते ही रानी ने इसका नाम बुड्ढा अमरनाथ यानी बुढ़े शिव जी रखा। बेस कैंप भगवती नगर से सुबह 5 बजे तक हर हाल में निकलना होगा और सुंदरबानी 10:30 बजे, नौशहरा 12 बजे, राजौरी ट्रांजिट कैब 1 बजे तक पहुंच जाना जरूरी है। वापसी के समय सुरनकोट से कट ऑफ टाइम 11:00 और राजौरी से 2 बजे होगा। पुंछ और राजौरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होने के कारण पूरे रूट पर मल्टी टायर सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स तैनात किए गए हैं। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। रूट पर जगह जगह वाटरप्रूफ टेंट्स और 24/7 लंगर सेवा लगाई गई है। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की, जो कल से शुरू हो रही है और 28 अगस्त को जो है इसका समापन होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का, FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी।

0: One hurricane, Lala, moves across the Big Island. Lala has maximum sustained winds of around 120 kilometers per hour. Forecasters warn of up to 63 centimeters of rain, raising the risk of flash floods and mudslides. The storm is expected to move west across the island chain later today. Meanwhile, power outages have affected thousands of people on the island. The storm could mark the Big Island's first direct hurricane strike in more than 150 years. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by the BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that as part of the chairship, India has identified four priority areas for focused engagements under the BRICS Environment Working Group. The priority areas are promoting sustainable lifestyles, afforestation, forest fire management and disaster resilience, circular economy and adaptation. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth world championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
5: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
2: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
1: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, डावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था।
3: राष्ट्रीय

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच की आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, सुरक्षा सबसे पहले। अगर

अब कल सुबह यानी 17 अगस्त 2026 को जम्मू के भगवती नगर से निकलने वाले बुद्धा अमरनाथ यात्रा के पहले बैच का हिस्सा हैं, तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी रास्ते की दिक्कत या इंक्वायरी के लिए नंबर्स जारी किए हैं। आप 0191-2459-0408 पर कॉल करके जो लाइव स्टेटस हैं वो जान सकते हैं। याद रखें, सुबह 5 बजे के बाद जम्मू कैंप से किसी भी गाड़ी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए समय का पूरा ध्यान रखें। और आपको बताना चाहेंगे कि ये यात्रा जम्मू से शुरू होकर 230 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहाड़ी इलाकों में जाती है, और जम्मू भगवती नगर से सुबह यात्रा कॉन्वॉय सिक्योरिटी के साथ निकलती है। उसके बाद ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट्स और ट्रांजिट कैंप्स सुंदरबानी और नौशारा आप पहुंचेंगे। उसके बाद राजौरी, यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनके रुकने और खाने पीने का इंतज़ाम होता है। उसके बाद पड़ता है सुरनकोट, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मुख्य हॉल्ट है। उसके बाद आप पहुँचेंगे मंडी यानी कि राजपुरा गांव, आखिरी मुकाम जहाँ बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स ने सुरक्षा और जाम से बचने के लिए सख्त कट ऑफ टाइम्स जो है वो जारी किए हैं, जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बेस कैंप से सुबह 5 बजे आपको निकलना होगा, दोपहर 10:30 बजे तक आपको सुंदरबानी कैंप जो है वो क्रॉस करना होगा, दोपहर 12 बजे तक आप नौशहरा क्रॉस करेंगे, दोपहर 1 बजे तक क्रॉस करेंगे आप राजौरी कैंप, और शाम 2 बजे तक क्रॉस आप मान लीजिए दोपहर 1 बजे तक आपको जो है राजौरी कैंप क्रॉस करना होगा, और सुरनकोट के लिए आपको वापस सुरनकोट से सुबह 11 बजे तक निकलना होगा। ये शेड्यूल है, ये कट ऑफ टाइमिंग्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। और आपको बता दें कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। अगर आपका एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जम्मू शहर में वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम, जम्मू हाट और गीता भवन राम मंदिर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। पूरे रूट पर वाटरप्रूफ टेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिंग्स लगाई गई है ताकि बारिश में दिक्कत ना हो। VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वॉलंटियर्स ने पूरे रास्ते में 24/7 फ्री कम्युनिटी लंगर्स जो हैं वो लगाए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के मुताबिक रास्ते में 3 फेजेस में स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ 24 घंटे तैनात किया गया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें, हेलीकॉप्टर सर्विस की अगर बात करें, तो सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से इस साल बुद्धा अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए पूरी यात्रा रोड से कॉन्वॉय के साथ ही करनी होगी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होने के कारण जम्मू जोन के IGP और डिविजनल कमिश्नर ने मल्टी टायर सिक्योरिटी कवर लगाया है। सभी श्रद्धालुओं की जो गाड़ियां हैं, सभी यात्रियों की जो गाड़ियां हैं वो पुलिस एस्कॉर्ट और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस के सुरक्षा घेरे में ही आगे बढ़ेंगी। नेशनल हाईवे पर QRTs यानी कि क्विक रिएक्शन टीम्स और 360 डिग्री CCTV कैमरा से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अगर आप भी बुद्धा अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा और सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाइएगा। आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल से 12 दिन की बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, और आपको बता दें कि इस 12 दिनों की यात्रा के लिए देश भर से अब तक 1,00,000 से ज़्यादा यात्रियों ने एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाया है, और कल 17 अगस्त को जम्मू से पहला ऑफिशियल बैच पुंछ के लिए रवाना हो रहा है। अगर आप ऑन स्पॉट या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ज़रूरी रखने हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। आपको CHC आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट अथोराइज्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर से बनवाया हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट। आपके पास 4 से 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 150 रुपये पर पर्सन की फ़ी लगती है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ही आपको RFID ट्रैकिंग कार्ड दिया जाएगा, जिसे गले में पहनना ज़रूरी है। मंडी यानी कि पुंछ पहाड़ी इलाके में है, और मानसून की वजह से ठंड हो सकती है, इसलिए लाइट जैकेट्स, स्वेटर्स और गर्म मोज़े साथ रखें। वर्षा हो सकती है तो उसके लिए आप रेनकोट या छाता रखना बिल्कुल ना भूलिए। रास्ता थोड़ा फिसलन वाला हो सकता है, इसलिए अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहने, स्लिपर्स वगैरह जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। अपनी रेगुलर दवाइयों के साथ ग्लूकोज, पेन किलर्स और ORS का पैकेट जो है वो आप साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर यात्रा सुबह सुबह जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शुरू होगी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आपको सुबह 5 बजे तक जम्मू कैंप से हर हाल में निकलना होगा। अगर आप लेट होते हैं तो सिक्योरिटी रीजन से गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जम्मू के बाद आप सुंदरबानी पहुँचेंगे, 10:30 तक आपको क्रॉस करना होगा सुंदरबानी।

12 बजे तक आपको नौशहरा क्रॉस करना होगा, 1 बजे तक आपको राजौरी ट्रांजिट कैंप जो है वो पार करना होगा और उसके बाद आप पहुंचेंगे पुंछ मंडी। इस साल बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए पूरी यात्रा जो है वो रोड से ही करनी होगी।

0: Shampa!
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 FM पहलगाम 100.1 DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अगर आप सोच रहे हैं कि मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रुक गई है तो बाबा की परंपरा कैसी पूरी होगी, तो आपको बता दें कि भोलेनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक का शेड्यूल जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में छड़ी मुबारक को श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर और शारिका भवानी मंदिर ले जाकर मुख्य पूजन शुरू कर दी गई है और अगस्त को यानी कि कल बड़शा चौक के श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में छड़ी स्थापना की रस्म भी पूरी हुई। कल यानी कि 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी के पावन अवसर पर दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन की जाएगी। महेंद्र जी हाँ, महंत दीपेंद्र गिरी जी के मुताबिक छड़ी मुबारक 22 अगस्त को श्रीनगर से रवाना होगी और इसको पहलगाम लिया जाएगा और वहाँ पर छड़ी मुबारक को पहलगाम में 22 अगस्त को रखा जाएगा। 23 अगस्त को पहलगाम में ही जो है इसे रखा जाएगा और वहाँ पर इसकी पूजा होगी। 24 अगस्त को पहलगाम से चंदनवारी की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। 25 अगस्त को चंदनवारी से शीशनाग की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। 26 अगस्त को शीशनाग से पंचतरनी की ओर इसे रवाना किया जाएगा और पंचतरनी में ही जो है रात को इसका ठहराव होगा। 27 अगस्त की अगर बात करें तो पंचतरनी में ही जो है इसे रखा जाएगा और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन इसे पवित्र गुफा में लिया जाएगा, जहां पर इसकी आखिरी पूजा होगी और इस अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन होगा। जी हाँ, भले ही खराब मौसम और बीआरओ रिपेयर वर्क की वजह से बालतल रास्ता लगभग डिसमेंटल हो चुका है, पर छड़ी मुबारक हमेशा की तरह अपने पारंपरिक पहलगाम ट्रैक से ही आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर किसी वजह से आप पवित्र गुफा नहीं पहुंच पाए हैं या कोई अपनी ख़राब सेहत की वजह से या ख़राब मौसम की वजह से पवित्र गुफा जाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाया है, माना जाता है कि अगर रास्ते में आप इस छड़ी मुबारक के दर्शन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल वही पुण्य मिलते हैं जो आपको वहाँ गुफा में जाकर आपको मिलते हैं, वहाँ माथा टेक कर मिलते हैं। तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, आपके पास मौका है कि आप जो है छड़ी मुबारक के दर्शन कर सकते हैं।

एफएम बाल्टल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, इससे पहले हमने आपको छड़ी मुबारक के शेड्यूल के हवाले से बताया और आपको बता दें कि मौसम खराब होने के बाद भी इस यात्रा को वीआईपी और

स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, हम छड़ी मुबारक की बात कर रहे हैं। महंत दीपेंद्र गिरी जी और पवित्र छड़ी मुबारक की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंडियन आर्मी का एक डेडिकेटेड ज्वाइंट सिक्योरिटी कॉन्वॉय साथ चलता है। छड़ी मुबारक के गुफा की तरफ बढ़ने से पहले आर्मी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पूरे पहलगाम चंदनवारी पंचतरनी मार्ग का स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन और सुरक्षा जांच करती है। छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले सभी जो साधुराज और ऑथोराइज्ड सेवादारों के पास स्पेशल वेरिफाइड RFID टैग्स होना कंपलसरी किया गया है। 22 अगस्त 2026 को सुबह जब छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा से रवाना होगी तो अनंतनाग से पहलगाम वाले रास्ते पर आम ट्रैफिक को रोका या डाइवर्ट किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं ये आम ट्रैफिक के हवाले से, और आपको बता दें कि अगर आप पहलगाम या अनंतनाग रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि उस दिन बाबा बर्फानी की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सुरक्षा घेरे के साथ श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना होगी। सिक्योरिटी एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे रूट पर टाइट विजिलेंस का इंतज़ाम किया है। तो यहाँ पर जो है आपको हम बता रहे हैं ये छड़ी मुबारक के शेड्यूल के हवाले से। 22 अगस्त को श्रीनगर से पहलगाम की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा, और हम बार बार कह रहे हैं कि आप अगर छड़ी मुबारक के दर्शन करते हैं तो उसका पुण्य आपको उतना ही मिलता है जितना आप गुफा में जाकर माथा टेकते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इसके अलावा आप हमें FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कल 17 अगस्त 2026 श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में बाबा बर्फानी की पवित्र छड़ी मुबारक का मुख्य पूजन किया जाता है। इस पूजन के बाद ही छड़ी मुबारक पवित्र गुफा की तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार मानी जाती है। नागपंचमी एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है जहां सांपों की पूजा की जाती है। यह हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्षा की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, और इस साल नागपंचमी कल यानी कि 17 अगस्त 2026 को मनाई जा रही है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि सांपों को दूध पिलाने या अर्पण करने से घर में शांति आती है और सर्प दोष या काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये त्यौहार प्रकृति और इंसान के रिश्ते को दिखाता है। सांप खेती को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खाते हैं, इसलिए किसान उन्हें अपना मित्र मानते हैं। भोलेनाथ अपने गले में वासुकी नाग को लपेटे रखते हैं और भगवान विष्णु शीशनाग पर विराजमान हैं, इसलिए इस दिन की पूजा दोनों ही भगवानों को प्रसन्न करती है। द्वापर युग में कालिया नाग नाम का एक बहुत ही जहरीला सांप यमुना नदी में रहता था, जिससे पूरा पानी जहरीला हो गया था। एक दिन बाल कृष्णा की गेंद नदी में गिर गई। जब कृष्णा जी पानी में गए तो कालिया नाग ने उन पर हमला किया। कृष्णा जी ने कालियानाग को हराया और उसके फन पर, जी हाँ, जब उन्होंने उस कालियानाग को हराया और उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया। कालिया ने माफी मांगी और नदी छोड़कर चला गया। जिस दिन कृष्णा ने यमुना को जहर मुक्त किया वो नाग पंचमी का दिन था, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो रस्सी की जगह वासुकी नाग का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान वासुकी नाग के शरीर पर काफ़ी चोटें आईं। उन्हें ठंडक पहुंचाने और शांति देने के लिए उन पर दूध छिड़का गया था। तभी से नाग पंचमी पर दूध अर्पण करने की परंपरा शुरू हुई।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

जी श्रोताओं, कल 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी के पावन अवसर पर छड़ी पूजन किया जाएगा। 22 अगस्त को श्रीनगर से शुरू होगी छड़ी मुबारक की यात्रा, जो कि छड़ी मुबारक पहलगाम ली जाएगी। 23 अगस्त को पहलगाम में ही छड़ी मुबारक को रखा जाएगा और वहां पर इसकी पूजा होगी। 24 अगस्त 2026 को पहलगाम से चंदनवारी की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। 25 अगस्त को चंदनवारी से शीशनाग की ओर इसकी रवानगी होगी। 26 अगस्त से छड़ी मुबारक को शीशनाग से पंचतरनी की ओर लिया जाएगा। जी हाँ, पंचतरनी में इसको रुकाया जाएगा। 27 अगस्त की अगर बात करें तो पंचतरनी में ही इसका ठहराव होगा और 28 अगस्त को श्रवंत

पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन इसे पवित्र गुफा की ओर लिया जाएगा, जहां पर इसकी आखिरी पूजा होगी और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन होगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जब हम गर्म कमरों में बैठकर ठंड की बात करते हैं, वहां बाबा बर्फानी के दशनामी सन्यासी साधु 13,000 फीट की ऊंचाई पर कपा देने वाली ठंड में नंगे पांव और सिर्फ एक धोती में बाबा की पवित्र छड़ी मुबारक लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका ये जोश और साधना ही अमरनाथ यात्रा की असली आत्मा है। पवित्र छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले अधिकतम साधु दशनामी संप्रदाय के होते हैं, जिनकी शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी। ये साधु मुख्यतः श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा और श्री अमरेश्वर मंदिर से जुड़े होते हैं। पूरी यात्रा के दौरान सभी साधु महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में शास्त्र और शास्त्रा के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मौसम की खराबी और ट्रैक्स के बंद होने के बाद भी साधुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई है। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन और प्रेरणादायक होती है। हर हॉल्ट पॉइंट यानी पहलगाम, चंदनवारी, शीशनाग, पंचतरनी पर सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले साधु पवित्र नदियों के जल से छड़ी मुबारक का जल अभिषेक करते हैं। रास्ते में और हर कैंप पर साधुओं द्वारा किए जाने वाले शंखनाद और वैदिक मंत्र चरण पूरे पहाड़ी इलाके को भक्तिमय कर देते हैं। शाम को नाइट हॉल्ट कैंप्स के टेंट्स में सभी सन्यासी देश में शांति, अमन और यात्रियों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान और हवन करते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साधुओं के लिए एक अलग और आसान व्यवस्था की है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में ही साधुओं के लिए एक डेडिकेटेड वेरिफिकेशन काउंटर लगाया जाता है। साधुओं को अपने अखाड़ा का आइडेंटिटी लेटर और जनरल फोटो आईडी प्रूफ देना होता है। साधुओं के लिए अखाड़ा में ही मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, जहां उन्हें कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से आम यात्रियों की तरह ही हर एक साधु को RFID ट्रैकिंग कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें यात्रा के अंत तक पहनना होता है। छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले साधुओं का कॉन्वॉय बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड VVIP सिक्योरिटी होता है। साधु की टोली के आगे पीछे CRPF यानी कि सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेस की QRTs, क्विक रिएक्शन टीम्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्मर कमांडोज चलते हैं। छड़ी मुबारक के आगे बढ़ने से पहले इंडियन आर्मी की ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी पूरे ट्रैक

को जो पूरा मार्ग है उसको सैनिटाइज करती हैं ताकि कोई लैंडस्लाइडिंग या सुरक्षा का खतरा ना हो। 22 अगस्त 2026 को जब साधुगन श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना होंगे तो हाईवे पर उनके कॉन्वॉय को सबसे पहले निकलने का अधिकार मिलेगा। आम ट्रैफिक को उनके गुजरने तक डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम पर। आप ये भजन समाप्त करिए और बने रहिए हमारे संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

श्रोताओं, कल का दिन बहुत ही दुर्लभ और पवित्र है। कल सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी का पावन दिन भी है। और इसी भी बड़ी खबर ये है कि कल सुबह श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में बाबा बर्फानी की पवित्र छड़ी मुबारक का मुख्य पूजन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीनगर के बर्षा चौक स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में ये मुख्य पूजन होगा। कल सुबह छः बजकर चार मिनट से 8:40 तक पूजा का सबसे उत्तम और शुभ समय है। इस पूरे रिचुअल को छड़ी मुबारक के कस्तूरियन महंत दीपेंद्र गिरी जी सन्यासियों और साधुओं के साथ पूरा करेंगे। सबसे पहले छड़ी मुबारक को गंगा जल और कश्मीर के पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद छड़ी मुबारक को नए रेशमी वस्त्र, फूलों की माला और चंदन से सजाया जाता है। महंत जी और देश भर से आए सन्यासी एक साथ बैठकर वैदिक सुक्ताज और रुद्राभिषेक मंत्राज का जाप करते हैं। शंखनाद से पूरा मंदिर गूंज उठता है, क्योंकि कल नागपंचमी और सावन सोमवार दोनों एक ही दिन है, इसलिए छड़ी मुबारक के साथ साथ भगवान शिव के गले के हार वासुकी नाग की भी विशेष पूजा होती है। उन्हें दूध, हल्दी और खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के अंत में विशाल आरती होती है, जहां जम्मू कश्मीर और पूरे देश में शांति, खुशहाली और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। कल का छड़ी पूजन इस यात्रा का श्रीनगर फेज का आखिरी बड़ा रिचुअल है। इसके बाद का शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। 18 अगस्त से 21 अगस्त तक छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा में ही रहेगी, जहां आम श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकते हैं। 22 अगस्त 2026 को सुबह छड़ी मुबारक सुरक्षा घेरे के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाएगी और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन को पवित्र गुफा पहुँचेगी। तो श्रोताओं, अगर आप श्रीनगर में हैं तो कल सुबह अखाड़ा पहुंचकर इस भव्य आरती का हिस्सा जरूर बनिए। सुनते रहिए ये विशेष शो प्रोग्राम आपका, जी हाँ, जो कि अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

श्रोताओं, अगर कल सुबह आप बड़शा चौक श्रीनगर के आसपास हैं तो दशनामी अखाड़ा जाना बिल्कुल मत भूलना। कल सुबह 9 बजे मुख्य छड़ी पूजन की आरती के बाद बाबा का पवित्र खीर और पंचमेवा प्रसाद बांटा जाएगा। सावन के सोमवार और नागपंचमी के इस पावन दिन पर बाबा का प्रसाद लेना अपने आप में एक बड़ा आशीर्वाद है। जी हाँ, नाग देवता और छड़ी मुबारक को शुद्ध देसी घी से बनी खीर, पंचमेवा, हलवा और शीतल दूध का मुख्य भोग लगाया जाता है। मुख्य पूजन खत्म होने के बाद सभी दशनामी सन्यासियों और साधुओं के लिए एक विशेष महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन जो है वो परोसा जाता है। अगर आप ये प्रसाद लेना चाहते हैं या इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये टाइमिंग्स नोट करनी होगी। कल सुबह 6:04 से लेकर 8:39 तक जो है ये मुख्य पूजन चलेगी और उसके बाद सुबह लगभग 8:45 पर अंतिम आरती और संकल्प पूरा होगा। आरती के तुरंत बाद यानी सुबह 9 बजे से दोपहर तक अखाड़ा कैंपस में आम श्रद्धालुओं और यात्रियों के बीच प्रसाद बांटा जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ये टाइमिंग्स जो है आप नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप श्रीनगर में हैं या श्रीनगर के आसपास हैं तो दशनामी अखाड़ा जाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो और वहाँ पर जाकर आप मुख्य छड़ी पूजन की आरती के बाद बाबा का जो पवित्र खीर और पंचमेवा प्रसाद जो है वो लेना

0: बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग। आइए अब आरती सुनते हैं।
1: है और भक्ति जो है वो भारत की देन है, भारत से प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की
2: जय।
1: ये सब कुछ प्राप्त जो है ये बाबा ने, बोले बाबा ने किसी ना किसी रूप में वेदों के रूप में हमें दिया है। भारत में वेद है, भारत में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, चारों वेद है, उपवेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है। भारत जो है वो ज्ञानमय है, भारत जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। भारत में जन्म लेना अपने आप में बड़ी बात है, और भारत में जन्म लेके यदि बाबा के धाम की सेवा हो रही है, देश की सेवा हो रही है, इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। बोलिए शंकर भगवान
2: की जय।
1: भारत में, भारत ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। पूरे विश्व में अर्थ की बात हो सकती है, पैसा कैसे कमाना है अन्य अन्य स्थानों में ऐसी चर्चा हो सकती है, काम की बात हो सकती है और बड़ी सारी चर्चाएं हो सकती है, परंतु भारत ऐसा देश है जिसमें मोक्ष की बात होती है। बोलिए शंकर भगवान की
2: जय।
1: अन्य ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मोक्ष की बात हो, जहां ज्ञान की बात हो, बस भारत ही हमें ज्ञान सिखाता है। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां बाबा बर्फानी ने, बोले बाबा ने अमर कथा सुनाई है। भारत ऐसा देश है वह कथा जो बाबा बर्फानी ने सुनाई माँ पार्वती को, और वही कथा हम सब श्रवण करते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, और उस गीता के माध्यम से पूरा विश्व जो है अपने आप को धन्य बना रहा है। तो भारत से ही सारे ज्ञान की उपज है, भारत से ही सारा शास्त्र प्रकट हुआ है, और उन शास्त्रों से सारे मनुष्य अपने अपने कल्याण का रास्ता देख रहे हैं। तो भारत ऐसा देश है जिसके लिए कहते हैं गायन्ति देवा किल गीतकानी, धन्यास्तुते भारत भूमि बागे, स्वर्गा पपरगा स्वग्रहेतु भूते, भवन्तु भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो भारत ऐसा देश है जिसकी, जिसका गुणगान जो है देवता भी करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानी, और वो वहां से सोचते हैं धन्य है भारत के लोग जहां भारत भूमि पे जो जन्म लेते हैं। तो बंधुओं, जो स्वर्ग की बात, अपवर्ग की बात, मोक्ष की बात जो है भारत में होती है, ऐसे आप भारतवासी हैं। बोलिए शंकर भगवान
2: जय।
1: भारत में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, जहां आप अन्य अन्य क्षेत्रों में पाप कर सकते हैं, पर पाप विमोचनी जो है, पाप धोने के लिए आपको गंगा मैया में डुबकी लगानी पड़ेगी। बोलिए शंकर भगवान, पाप कर सकते हैं, पाप धोने के लिए भारत की ओर आना पड़ेगा, महाकुंभ में स्नान करना पड़ेगा। ये भारत वर्ष की महिमा है। भारत के बिना और कोई साधन नहीं है। भारत में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी भारत में है, द्वारका जी भारत में है, रामेश्वरम जो है धाम है भारत में, जगन्नाथ धाम भारत में है, नौ देवियां हिमाचल की भारत में है, और ऐसी ऐसी शक्तियों का अनुभव भारत में होता है। बिना घी के, बिना तेल के ज्वाला देवी के दर्शन दिन रात होते रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। ये भारत की महिमा है, ऐसी ऐसी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन है वो भारत। और बाबा बर्फानी का यह धाम, बर्फ जहाँ हर जगह पड़ती है, बालटाल से लेकर पहलगाम से लेकर हर जगह बर्फ पड़ती है, और बाबा के धाम में भी अंदर बाहर गुफा के बर्फ पड़ती है। पर बाबा के धाम की महिमा देखो, बर्फ का शिवलिंग इतने बड़े आकार में, और बाबा के शिवलिंग निश्चित स्थान से, कई हजारों सालों से निश्चित स्थान पे बाबा का शिवलिंग बनता है, माँ पार्वती के दर्शन होते हैं, भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये केवल मात्र ये बाबा बर्फानी और भारत में ही ऐसा संभव है। बोलिए शंकर भगवान
2: की जय।
1: और भारत ये देश, ये कहीं मिट्टी किसी के ऊपर पड़ जाती है और मिट्टी को धूल, वो अपने आप को सोचता है कि मैं गंदा हो गया। भारत की ऐसी महिमा है, ब्रज रज वृंदावन में भक्त जो है मिट्टी से लेप करते हैं, वो रज को धारण करते हैं, रमन रेती में मिट्टी में वो उल्टे पुलटे होते हैं, वो रज को धारण करते हैं। ये भारत भरष की महिमा है, ऐसी महिमा और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। बंधुओं, भारत ने सारा ज्ञान दिया, भारत भरस ने, भारत में जो शास्त्र हैं उनमें हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक जो है सच कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं सूर्य लाल होता है। हमें तो कई हजार सालों से पता है सूर्य लाल है, चंद्रमा सफेद है, मंगल लाल है, बुध हरा है, बृहस्पति पीला, शुक्र सफेद है, शनि जो है वो काला।

0: कहा है, राहु केतु धूम्रवर्ण के हैं, कई हजार सालों से हमें यह प्राप्त है, तो वो ज्ञान हमें किसने दिया? वेदों ने दिया, भारत देश ने दिया। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: कई कई सर्च वैज्ञानिक कर रहे हैं। कुछ सालों पूर्व एक सर्च हुआ जो मंगल के ऊपर था, उसमें कहा गया कि मार्स इज द पार्ट ऑफ अर्थ, जो मंगल है वो भूमि का एक हिस्सा है। शास्त्रों में हमें पहले बता दिया गया भूमि पुत्रो महातेजा, वो भूमि का पुत्र मंगल है। वो हमें बहुत देर पहले हमें प्राप्त, हमें ज्ञान था, और अभी वो उस पर रिसर्च हो रही है। युग शास्त्र जो यन परवाणु, उस छुपाई में जो है वो धरती से लेकर ऊपर आकाश में जो सूर्य देव है उसकी जो उसका जो परिवर्तन है, उसका जो डिस्टेंस है, उसका हमें प्राप्त हो गया है। उस छुपाई से हमें बोध हो गया है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो सब शास्त्रों से प्राप्त है। और ग्रहण लगता है, ग्रहण पे सूर्य को चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो ग्रहण जो लगता है उस पर कई प्रकार के सर्च होते हैं। पर जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें ऐसा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें हमें पहले ही बता दिया जाता है। और बड़ी सर्च नहीं, जो गुरुजन है, जो ऋषियों से हमें ज्ञान प्राप्त है, वो ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें यह प्राप्त हो जाता है। उस घड़ी में ये ग्रहण लगेगा, उसका सूतक तब होगा, वो पंचांग में स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, और उसकी गणना बिल्कुल सटीक होती है। जो पंचांग में बताया गया है वही उसी समय वो ग्रहण लगता है, उसका सूतक पातक सब उसी में बता दिया जाता है। ये भारत वर्ष की महिमा है। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: अपने आप को धन्य समझे कि हम भारत में हमारा जन्म हुआ, जहाँ चार धाम है, जहाँ चार वेद है, जहाँ चार पुरुषार्थ है, धर्म की शिक्षा जहाँ दी जाती है, ज्ञान की शिक्षा, वैराग्य की शिक्षा, और 16 संस्कार जो है वो भारत में प्राप्त होते हैं। यज्ञोवीर संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जो ज्ञान है वो भगवान शंकर के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें प्राप्त है। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: और जो जितनी भी सर्जरियां ऑपरेशन की बात चलती है, तो शास्त्रों हमें पहले भी बता दिया, जब गणेश जी का जो सिर है वो भगवान शंकर ने काटा तो हाथी का सिर लगाया। तो ये सर्जरी सबसे पहले शास्त्रों में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे ऋषियों ने, भगवान ने वो किया। राजा दक्ष के ऊपर बकरे की गर्दन लगाई गई, ये भी हमें पहले से ही बोध है, अभी उस पर रिसर्च हो रही है, वो आगे आगे होती रहेगी। परंतु शास्त्रों के शास्त्रेतर कोई भी बात नहीं है। हमें धन्य समझे कि हमारे ऋषि मुनि हमें भोजन करने का नियम बता गए, कैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्म एव तेव गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, जल गुमा के भोजन प्रसादी पाते थे। वो जल इसलिए गुमाते थे, जहाँ भोजन पड़ा होता था भोजन के आगे पीछे जल गुमाते थे, ताकि कोई चींटी इत्यादि इसमें प्रवेश ना करे और भोजन जो है शुद्ध हमारे अंदर जाए। तो इसलिए ये सारे ज्ञान की बातें, सब कुछ, आरती करने का नियम, पंच तत्व की पूजा, और अश्व जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष की पूजा, 2400 घंटे पीपल जो है वो ऑक्सीजन देता है, तो उनके नीचे दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष लगाना, बिल पत्र की पूजा, प्राणी मात्र की पूजा, और हर प्रत्येक व्यक्ति की पूजा, कण कण में भगवान, तन तन में भगवान, और मन मन में भगवान, सारी शिक्षा ये भारत वर्ष से हमें प्राप्त होती है, भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए आप धन्य समझे और स्वतंत्रता दिवस पर यह विचार करे कि जहाँ हम हैं, जिस स्थान पे, जिस भारत देश में है, उसकी सेवा, उसके प्रति निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, यही हमारा परम धर्म है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाबा बर्फानी की कृपा हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: तो इस भाव को धारण करते हुए आइए, बोले बाबा की आरती में प्रवेश करें। बोलिए।

0: नमो हे हरि ओम हरे हरे हरे महादेव
1: हे शिव
0: क्षमा लावण माला रोंडा।

0: योग्यं
1: देहि मे परमं सुखं रूपं देहि अयं देहि जठो देहि तुझो यहि।
0: भोले बाबा आप सबका कल्याण करें, मंगल करें। बाबा बर्फानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसे हाथ करेंगे। ओम देव।

0: अमृताभिषेकोऽस्तु
1: अस्तु अमृताभिषेकः
0: शंकर भगवान की
1: जय
0: धर्म की
1: जय हो
0: धर्म का
1: नाश हो
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो
0: विश्व का
1: कल्याण हो
0: बात वर्ष
1: महान हो
0: गौ माता की
1: जय हो
0: माता पिता की
1: जय हो
0: गुरु जनों की
1: जय हो
0: सब संतों की
1: जय हो
0: शंकर भगवान की
1: जय हो
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो
0: आज के आनंद की
1: जय हो
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो।
2: श्रोताओं आप आरती सुन रहे थे, शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में

आकाशवाणी के एफएम दालतल से सुन रहे थे एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती वेव्स के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे सहायक इंजीनियर्स नसीर अहमद एहंगर, एजाज अहमद गुरकू और उनके साथ है मोहम्मद सलीम। मैं आपकी उद्घोष का फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की यह सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

दक्षयज्ञ विनाशिनी। अर्थ जोई ई दुर्गा माता सती साध्वी भगवान सदाशिव ऊपर प्रीति राखनारा भवानी संसार बंधन माथी मुक्त करनारा आर्या दुर्गा जय अपावनारा त्रण नेत्रवाळा आद्या त्रिशूल धारिणी।

सतीश पिनाक धनुष धारण करना चित्रा मनोहर स्वरूप वाला प्रचंड स्वरथी घंटानाद करणारा महातपश्चर्या नु आचरण करणारा मनन शक्तिरूप बोधशक्तिरूप एवा अहंतानो आश्रय चित्तरूप चिता चेतना रूपा चेतिशक्ति दुर्गा देवी चैतन्य शक्ति चेतिशक्ति दुर्गा देवी तो साथीश सर्व मंत्रो जेमनु स्वरूप छे ते सत स्वरूप अने आनंदमय आनंद स्वरूप वाला छे एना स्वरूप नो कहीं अंत नथी अने ए सौने उत्पन्न करनार छे एथी ए भावीनी छे ए कल्याण रूप छे एही भव्या छे जेमना थी चढ़िया तो बीजो कोई भव्य तत्व नहीं एथी अभव्या पण कहेवाय छे सदैव संचारशील छे एथी ए दिव्य एवा दुर्गा माता ने अमे प्रणाम करीए छे तो पछी आगळ

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

जासुकों मुनि वरटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार

हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

अगर हर इंसान घट घट में बसे ईश्वर को जान दे तो संसार में स्वार्थ, अभिमान, द्वेष और हिंसा जैसे कई अमानवीय तत्व समाप्त हो जाएं। अगर हम अपने से निर्बल जीवों से प्रेम करने लगें, दुखियारे जरूरतमंद लोगों में दरिद्र नारायण का भाव रखकर उनके आवश्यकताओं को पूरा करें तो ये ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। इसीलिए वेदों, उपनिषदों और सभी धर्म ग्रंथों ने दान की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ज्ञान दान, यहाँ तक कि जीते जी अंगदान करके परमात्मा के प्यारे भक्तों ने इतिहास रचा है। आज के युग में

नेत्रदान से लेकर मृत्यु के पश्चात देहदान के प्रति लोगों में काफी जागरूकता दिखाई देने लगी है। हर तरह के दान में गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ है। हम इस प्रकार दान दें कि हम में अभिमान ना आए, ना दान लेने वाला ही स्वयं को हीन समझे। श्रेष्ठ दान तो वो है जिसमें दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता भी ना चले।

अपने राम।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।